इतना रोगी नहीं होता जिन्ना के बहुता खान वाला रोगी होता है। भुखे घट मरते ने बहुते खान वाले ज्यादा मरते। ए रसना सतगुरु जी उपदेश कर रहे ने, ए रसना तू अन रस राज रही। अन रस कहते ने होर रस, होर रसा विच ते पै गई, ऐ भी खा लवा वह भी खा लवा। किसी की निंदा चुगली की, किसी नु माड़ा कहा, किसी नु गालां कढ़िया, माड़ी गल करके किसी का घर बर्बाद कर दिता, ये काम तो तू किया। पर ऐ रसना तू प्रभु का सिमरन नहीं किया। खाण दे भी रस हैं, झूठ बोलना भी का रस है, निंदा चुगली करनी भी का रस है, ये सारे रस।

अपनी अपनी रसना अपनी अपनी जुबान नो समझाइए अज दा ए शब्द सुन के आओ सवाल करिए अपनी अपनी जुबान दे नाल ऐ रसना तू रोज बहुत कुछ खानी है रोज बहुत कुछ बोलती है माड़ा बोल के किस दा दिल दुखा देता माड़ा बोल के किस दा घर बर्बाद कर देता पर ऐ रसना जे परमात्मा ने तेनू शरीर दे नाल लाया ते फिर बुरा ना बोल रसा कसम च ना पै इस रसना दे नाल प्रभु दा सिमरन कर खांद्या खांद्या प्यास नहीं मिटनी हां

जबार नु समझाइए ऐ रसना जे गुरु महापुरुष ओ कहंदे ने अकाल पुरख शरीर दे जितने रोम ने इन्हां नु जबान

सत्ता महापुरुषा ने विचार की थी कि बाल्मीक नु सीधा उपदेश दिता तो एदे ते असर नहीं होना क्योंकि मन कठोर हो चुका सी। कहन लगे इत्थे बैठ जा ते बह के हुण तू मरा मरा

मरा मरा जपदिया जपदिया ऐसी मालक दी मेर होई बिरती लग गई मन जुड़ गया ए रसना जेड़ी मरा मरा कहती सी कृपा हुई मालक दी मरा मरा हुण राम राम हो गए समा बीते ओही आरिया समाज दे सत रिखी फिर उस पासे आए राम राम दी आवाज आ रही है इधर उधर देखिया बंदा कोई नजर नहीं आंदा एक मिट्टी दा ढेर है उत्ते कास उगे अपनी शक्ति

ना ही कोई ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जेड़े बोल बोल की मैं तेनू अपने आप ते मोहित कर लवा ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है मैं ते अवगुणा दा परे तकना के परमात्मा रूप कैसे

वो धनवंत है, कुलवंत है, पतवंता सज्जन है, जिद हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दा निवास। हे परमात्मा, मेरे अंदर ते अवगुण भरे ने गुण ऐसा कोई भी नहीं। हे परमात्मा, आप दी मंग है के बोल मिठे बोल, मैं जद बोलना कौड़ा बोलूं, ते मेरा परमात्मा कैसा है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोर। ओ मिठा बोल बोलदा ते हुक्म करदा है भाई मिठा बोल बोल, जो बोल बोलने करके किसे दा भला होवे, किसे दा मन ना टुटे। हे परमात्मा, जेड़े गुण तेनू चाहिए ने मेरे विच नहीं, इसलिए मैं चंगा नहीं।

दो मित्रां नूं आपस विच काम पे आ। एक मित्र ने किया, लै मित्रा मेरा काम करना ही, कहन लगा चंगा कर देवांगा। समा पै गया, भुल गया, ना कीता। एक दिन

पर तू अपने नाल भी अपराध कर रहे। किस तरह? नाम ना जपे से आत्म काती। जो मनुख नाम नहीं जपते स्मरण नहीं करते वो अपनी आत्मा का आत्मघात करके अपराध कर रहे हैं। इस अपराध तो किवें बचिया जाए?

पालत पालत मुख उजल होए है, नित ध्याय हर पुरख निरंजना। In this world and the next, radiant and beautiful are the faces of those who continually meditate

सफल हो मन में लायो पाओ सुख सहज आनंद गाना गुरबाणी गाव पाए सुख सहज आनंद गाना तब जपते हैं दुख जाए

तर्म में श्रेष्ठ तर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, छगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल क्रिया, छगल बाणी में अमृत बाणी, हर को जस सुन रसन बखानी, मैं ता कर्म करने सी सिमरन वाली, मैं कुछ कीता भी सही ता रिद्धियां सिद्धियां नू प्राप्त करके हंकार दी पंड होर वड्डी कर ली। तन गुरु नानक पातशाह संसार नू तार दे होए जदों वली कंधारी जेड़ा बड़े अहंकार दे नाल चिले कटे तपस्या कीती रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कीतियां ते अपने जोर दे नाल पानी बंद कीती बैठे। जेड़ा मेरा चेला होवे उसनू ए पानी मिल सकदा है। धन गुरु नानक पातशाह क्योंकि जगत जलंदे नू ठारन जो आए सन जा पहुंचे वेख लैंदे सन भई किथे सृष्टि नू दुख दिता जा रहा, किथे रब दी साजी होई सृष्टि दुखी है ते फिर आप जाके सुख वंडदे सन। पापी नू मारिया नहीं पापी नू तार देना, जिथे भी पुन्ना दा गलत इस्तेमाल हो रहा सी पुन्ना नू पुन्ना वाले पासे जोड़ दिता। वली कंधारी कर्म कांड करके पत्थर ते बैह के बड़िया रिद्धियां सिद्धियां विखांदियां विखांदियां पत्थर ते बैठा होया आप भी पत्थर हो चुका सी। धन गुरु नानक पातशाह जी ने मरदाने नू भेजिया, जा मरदानिया पानी लैके आ। मरदाना एक वेरी गया, दूजी वेरी गया, तीजी वेरी गया, बड़े अहंकार दे नाल कहन लगा जे इतना ही तेरा गुरु शक्तिवान है ता आप क्यों नहीं कढ लैंदा पानी, तू मुसलमान होके काफर दी संगत कर रहे, कुछ अकल कर। ते मैं काफर नू पानी नहीं दे सकदा। धन गुरु नानक पातशाह अच्छा अहंकार दूर जो करना सी। मर्दानिया आ दो पत्थर पुट सत करतार सत करतार नाम जपदिया जदों ए दो पत्थर चुके तां विचों अमृत रूपी चश्मा फुटिया। उचारण करो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। हुण जितना पानी जितना जल ए काबू विच रख के बैठा सी ना वली कंधारी सारा दा सारा तले आ गया, उपर जल सुक गया। गुस्से विच आके लोहा लाखा होया होया मेरियां शक्तियां दा इसनू पता नहीं, मैं की कर सकदा हां। आ मैं हुणे दसदा हां अपनी शक्ति दे नाल एक वड्डा पत्थर रोड़िया पहाड़ी तो। मर्दाना कहन लगा महाराज कृपा करो मेहर करो, इस पौजल तो बचना बड़ा औखा है। ते धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे मर्दानिया तू करतार नू चेते रख जलाल विच रहो। करतार दे नाल जेड़े जुड़े रहंदे हन ना उना दा कोई वाल विंगा नहीं कर सकदा। एडा पर्वत दा पर्वत रुड़ के आ रहा है ते धन गुरु नानक पातशाह जी ने बख्शिश कीती कृपा कीती कोट ब्रह्मंडा दे बादे बादे बादे बादे बादे बादे। जां आपने नदर कीती तां ए पत्थर नेड़े ही आके जदों रुकिया तां आपने झट इस पत्थर ते पंजा ला दिता ते इस तरह लग्या जिवें मोम दे विच पंजा खुब जांदा है। सारा जगत जो वली कंधारी तो दुखी सी धन गुरु नानक पातशाह जी दे चरणां विच आ जुड़िया। हुण वली कंधारी सोचदा है भई मैं तां कखों होला हो गया, एडियां शक्तियां दा मालक सां पर मेरी तो कोई भी वाह ना चली। हो सकदा है ए मेरे अहंकार नू दूर करन लई आया होवे, आप खुदा आया होवे, मेरी रिद्धियां सिद्धियां अहंकार ते क्योंकि पुन्ना ते रिझदा है रब। हो सकदा है मैनू तारन लई मेरियां रिद्धियां सिद्धियां मेरे अहंकार दे सदके मैनू तारन आया होवे। मन नीवा हो गया
ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮਸਤਕ ਰੱਖਿਆ, ਕਦਮ ਬੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹ ਸਾਈਂ ਦਿਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਹੁੰਦਿਆ ਹੁੰਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਮੇਟਣ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਪਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਬੰਦ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੀ ਖੁਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਖੁਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤਬ ਸੁਖ ਭਏ। ਜਦੋਂ ਖੁਦੀ ਮਿੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਬ ਲੋ ਪੋਟ ਉਠਾਈ ਚੱਲੇ ਤਬ ਤੱਕ ਦਾਮ ਭਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਾਨ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੁੰਗੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੰਘ ਜਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਕੁਝ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ, ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ। ਉਹ ਪੰਡ ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਤੱਕ ਪੋਟ ਉਠਾਈ ਚੱਲੇ ਤਬ ਤੱਕ ਦਾਮ ਭਰੇ। ਪੋਟ ਡਾਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਦੇ। ਪੋਟ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ